के ऊपर वाले हिस्से पर नजर पड़ जाती है जबकि नीयत ऐसी नहीं होती, क्या इस सूरत में खेल ही ना देखना चाहिए? ये तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कितना फितने का सबब है और कितने आपकी नजरें बार बार गुनाहगार हुए चले जा रही हैं और कितना जरूरी है ये खेल देखना कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं, ये तो आप खुद ही फैसला करेंगे। ऐसी औरतों के लिए पर्दों के क्या अहकाम हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं जबकि वो आजाद औरतें हैं? वो बेचारी हैं तो आजाद लेकिन न होने के बराबर, उनकी आजादी क्या आजादी है? काम वाली औरतों के अहकाम निस्बतन नर्म होंगे आजाद खुद मुख्तार और घरेलू हिफाजत वाली औरतों के, अगरचे गुलामी नहीं है लेकिन यह भी उससे मिलती जुलती चीज है, इसलिए उनका हुक्म आम औरतों से फर्क होगा। क्या डॉक्टर से अकेले में चेक कराना दुरुस्त है? इसमें एहतियाती बरतनी चाहिए, बहुत ही कोई ऐसी मजबूरी हो कि जिसमें कोई और हल ना हो तो और बात है। जी ये डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ये तो इंग्लैंड वगैरह में भी ऐसा नहीं होता, औरत के साथ कोई और औरत होती है, डॉक्टर्स बिल्कुल तन्हाई में चेक नहीं करते, या नर्स होती है या कोई और स्टाफ का शख्स होता है, तो ये इंतहाई की बात वही बात हो जाती है ना, जैसे उस औरत का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई भी नहीं तो वो उसको रखेंगे मोर्चरी में डालेंगे करेंगे, एक और सूरत है, लेकिन अगर आम हालात है तो साथ किसी को लेकर जाइए। नौजवान खातून किसी ऐसे इदारे में पढ़ाती है जहां हिजाब की इजाजत नहीं, उसे क्या करना चाहिए? ये तो उसको पता है कि वो अल्लाह के हुक्म को किस तरह माने, वो अपने इदारे वालों से बात करे, क्या मुश्किल है? अगर वो यहां पर पढ़ाती है मुसलमान मुल्क में तो इन आयात को समझकर वो अपने इदारे वालों को समझा दे, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस सारा दुनिया के कामों में ही क्यों चलता है, दीन के मामले में हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? बुनियादी वजह यह है कि इल्म नहीं, पर इल्म है तो शेकी है। जी हाँ, इल्म यकीन की कैफियत और इस बात का यकीन कि अल्लाह के पास वापस जाना है वो सबसे बड़ा है। जिस दिन आपकी जिंदगी में अल्लाह अकबर आ गया ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। चचा मामू अगर गले लगाए तो क्या किया जाए? आप देखिए कि किसी भी चीज का जब खतरा होता है तो आप क्या करते हैं, बताइए मुझको। कोई कानून आपको बताता है यहाँ खतरा है और ये आगे कदम न रखना या करना, क्या करते हैं? जब आपको पता होता है, आपकी सेंसेस का एकदम वो उस पर आने लगता है सिग्नल, आप क्या करते हैं? आपको पता है कि जैसे बहुत से लोग जब मुझे किसी क्राउड पब्लिक में मैं जाती हूँ, जैसे मैं रात लाहौर में थी तो मुझे पता होता है कि अब ये आएंगे और मेरे हाथ चूमेंगे, तो मैं सलाम इस तरह करती हूँ कि यूं नीचे रखती हूँ हाथ, यूं कोशिश करती हूँ कि यहाँ, ताकि वो खड़े हों तो उनको बहुत झुकने की तकलीफ करनी पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अगर चूंकि गुनाह नहीं है किसी का हाथ चूमना, लेकिन ये एक रिवायत पड़ जाती है और फिर शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना चूमें, लेकिन अगर मैं उनके बराबर में या ऊंचा करूंगी हाथ तो वो आसानी से पकड़ के चूम लेंगे, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, नीचे रखती हूँ हाथ ताकि वो तकलीफ ना करें, या जरा सा दूर रखती हूँ। तो हर शख्स जानता है कि वो खुद को कहां से कैसे बचाए, उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाए। महरम मर्द मसलन मामू चचा दादा नाना के साथ मुआनका का क्या हुक्म है? मुआनका नहीं करना चाहिए मर्दों से, चाहे महरम ही क्यों ना हो, हाथ मिला लीजिए काफी है, सर पे हाथ फेरते हैं जो महरम रिश्तेदार हैं बुजुर्ग, फिरवा लीजिए। महरम के सामने सतर की वजाहत कर दें, आपने जिक्र किया था जैसे नमाज में तो एक बाल नजर ना आना चाहिए, दुपट्टा बहुत लपेट कर बांधना होता है, लेकिन जैसे बाप भाई वगैरह के सामने इस तरह नमाज वाला सतर बिल्कुल बाल भी नजर ना आने का हुक्म नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। आजकल घरेलू जिंदगी में नौकर नागुजीर हो गए, औरतें मिलना बहुत मुश्किल है, क्या खुद को अच्छी तरह लपेट कर नौकर के साथ किचन में काम के लिए बिल्कुल नौजवान के साथ नहीं किया जाए, क्योंकि बसा औकात बहुत खराबियां करते हैं ऐसे नौकर, इल्ला ये कि बचपन से वो आपके साथ हों और बहुत देखे भाले परखे हों, वो अवित्ताबीन गैर उलिल इरबा में शामिल हों तो ठीक है। क्या नामहरम से, यह हम सवाल है, क्या नामहरम से फोन पे बात करना भी तखलिया में आता है? उसमें जरूरत की कुल ना कौलम मारूफ है, जरूरत की मारूफ बात जिसमें आपके सामने, देखें कि फोन भी दो तरह से होता है ना, एक फोन रखा हुआ घर में बीच में लॉबी में मसलन, आप फोन कर रहे हैं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपको कोई डर नहीं, कोई हर ये तखलिया नहीं है, लेकिन आप लेके चुपके अपने बेडरूम में कुंडी लगा के टेलीफोन कर रहे हैं किसी मर्द को, व्हाट डज इट मीन, गड़बड़ है ना? तो ये आपको खुद दिल बताएगा ना ये गड़बड़ है, और वो आप फोन उठाते हैं, किसी का दूसरी तरफ से फोन है, कोई आपके वालिद के दोस्त पूछ रहे हैं आपके वालिद के बारे में, आप उनको बता रहे हैं, और हो सकता है आपकी वालिदा दूसरे कमरे में, वो पूरी तरह बात ना भी सुन रही है, लेकिन एक मारूफ चीज में हो सकता है, वो थोड़ी देर में गुजर रही हूँ इधर से, तो ये तखलिया में नहीं आता, तखलिया

0: teeth. No timer for menstrual pain. Hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills. Your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women. You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
1: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
2: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाओ सिंघार और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ, और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: खुद ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए
1: मोहम्मद,
0: इस्लाम
1: जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।